ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त में तय पाने वाले अपने मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब में तेजी से फौजी दस्तों की तैनाती के लिए जरूरी इकदाम करने का फैसला किया है। तीनों ममालिक ने पीर को सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी अरब और पड़ोसी मुल्क यमन के हुकूमत मुखालिफ हौसी बागियों के दरमियान हमलों का तबादला जारी है। बाद में जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में हौसी बागियों का नाम लिए बगैर सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मुजम्मत की गई। बयान में कहा गया है कि तीनों ममालिक से फरीकी माहदे के मुताबिक अपने मुश्तरका दिफाई वादों पर अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर पेशरफ्त करेंगे। बयान में ये भी कहा गया है कि वो सऊदी अरब में तय शुदा फौजी दस्तों और सलाहियतों की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदाम करेंगे और उनकी तेज़ी से तैनाती यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के हामी उन्हें कैद से रिहा करने का मुतालबा करते हुए दारुलहुकूमत इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हजारों लोग इतवार के रोज सड़कों पर निकल आए, जहां पर खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की बुनियादी ताकत है। इमरान खान को 2022 में इख्तदार से बेदखल कर दिया गया था और अगले ही साल उन्हें बदनवानी और दीगर इल्जामात में जेल भेज दिया गया। उनके हामियों का कहना है कि इन इल्जामात का सबब सियासी था। खान की तीन बहनों को गुज़िश्ता माह अमनियामा कानून के तहत हिरासत में लिया गया। मुजाहिरीन उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। नेपाली हुकूमत ने चीन के साथ वाक़े अपने सरहदी इलाके में अगस्त में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने और अचानक आने वाले सैलाब की तबाही के बाद तलाश और बचाव के कामों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। हुकूमत ने नागुजीर तलाश और बचाव की कोशिशों के अलावा फौज और पुलिस के एहलकारों पर मुश्तमिल कार्रवाइयों को रोकने के फैसले का ऐलान पीर को किया। हुकाम ने कहा कि आफत के 40 दिन बाद जिंदा बच जाने वालों को ढूंढ निकालने का इम्कान कम है। उन्होंने कहा कि अगर नई मालूमात सामने आईं तो कार्रवाइयां दोबारा शुरू की जाएंगी। 26 अगस्त को आने वाली आफत में नेपाल में 1455 अफराद हलाक और 5200 से ज्यादा लापता हुए। लापता होने वालों में 5

0: किंग का कुजी क्योटो के एक मशहूर मंदिर का नाम है। इस मकालमे में वहां तक जाने का रास्ता पूछा जा रहा है।
1: 101番のバスに乗ってください。
2: 101नंबर की बस में सवार हूं।
0: याकु इचिबान यानी 101 नंबर। बस बस का जापानी तलफ़ुज़ है और नोत्ते फेल नोरु यानी सवार होना की ते शक्ल है। नोत्ते कुदासाई कि मैं नहीं हुए सवार हूं।
2: तो सामईन अब सुनिए और दोहराइए।
3: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें। फर्ज करें आप जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका रास्ता भूल गए। आप किसी को नक्शे में अपने होटल के मकाम पर उंगली रखकर दिखाते हुए पूछना चाहते हैं कि इस होटल तक कैसे जाएंगे। इस होटल की जापानी है
3: कोनो होटेरु, कोनो होटेरु।
0: बात का आगाज आनो सुमिमासेन से करें।
1: आनो सुमिमासेन, कोनो होटेरु मादे दो इत्तारा ई देसु का? あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब फर्ज करें आप क्योटो स्टेशन पर हैं और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म को कहते हैं
3: शिंकानसेन नो होम, शिंकानसेन नो होम।
0: तो सामीन कोशिश करें।
4: अनो सुमिमासेन, शिंकानसेन नो होम मादे दो इत्तारा ई देसु का? अनो सुमिमासेन, शिंकानसेन नो होम मादे दो इत्तारा ई देसु का?
2: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मश्क का। आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं। दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी।
2: तो सामने सुनिए और दोहराइए।
3: मिगी, हिदारी।
0: सीधा जाने को कहते हैं मासुगु। इसे भी दोहराकर मश्क करें।
3: मासुगु।
0: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं, तो कहेंगे मासुगु इत्ते कुदासाई। और अगर दाएं मोड़ने का कहना हो तो फेल मगारू यानी मोड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगाते कुदासाई।
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है।
5: माइक नियाउ ने, काक्कोई।
6: उरेशी ना। अनो सुमिमासेन, निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का?
5: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
6: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
2: アブミヤーがサフリヒダイエットナマ。カイトとマイクね、ミエプリフェクチャー जाने के लिए हाईवे बस इस्तेमाल की थी। बस के जरिए सफर में कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये सफर का सस्ता जरिया है। तो आज का मौजू है जापान की हाईवे बसें।
0: हाईवे बसों के जरिए कई मकबूल मकामात तक बराह रास्त जाया जा सकता है। अगर रात की बस से सफर किया जाए तो सोते हुए सफर करने के बाद इस वक्त बचाया जा सकता है।
2: ये बसें ज्यादातर किन मकामात के लिए दस्तयाब हैं?
0: हाईवे बसों के कई रूट हैं। टोक्यो से नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे बड़े शहरों के रूट मकबूल हैं। इसके अलावा कोहे फूजी, हाकोने और कुसात्सु ओनसेन गर्म चश्मा जाने वाले रूट भी हैं।
2: इनकी सीट की बुकिंग किस तरह होती है?
0: इंटरनेट वगैरह के जरिए टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है। बाज बसों में सीट नंबर तक भी तय किया जा सकता है। लग्जरी बसें कुछ महंगी होती हैं, लेकिन उनमें पांव फैलाने की जगह या अलग कमरे जैसी नशिस्तें दस्तियाब होने के बायस सफर ज्यादा आरामदेह हो जाता है।
2: यानी जापान में मुख्तलिफ इलाकों के सफर के लिए बस एक इंतखाब हो सकता है।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 6 अक्टूबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानों से सुने समाचार। उत्तर कोरिया द्वारा अपहृत जापानी नागरिकों के परिजनों ने प्रधानमंत्री ताकायची सानाए से आग्रह किया है कि वे सभी अपहृतों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए मजबूत राजनयिक का सहारा लें। मंगलवार को योकोता ताकुया और ईजुका कोइचिरो ने पिछले महीने की अपनी अमेरिका यात्रा का ब्यौरा प्रधानमंत्री ताकायची को दिया। योकोता अपहृतों के परिजन समूह के प्रमुख हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी का 13 वर्ष की आयु में अपहरण कर लिया गया था। वहीं ईजुका जब 1 वर्ष के थे तब उनकी मां तागुची याइको को अगवा कर लिया गया था। योकोता और ईजुका जापानी सांसदों के साथ अमेरिका गए थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर उनका सहयोग मांगा था। योकोता ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे जरा सोचें कि अगर उनके किसी बच्चे का अपहरण हुआ होता तो उन्हें कैसा लगता। योकोता ने इच्छा व्यक्त की कि जापान सरकार मजबूत राजनयिक का सहारा ले ताकि उनकी मां अपनी बेटी मेगुमी से जल्द मिलकर उसे गले लगा सकें। योकोता ने बताया कि सोमवार को मेगुमी का 62वां जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक लंबा और कष्टदायी जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। योकोता ने अफसोस जताया कि वे अपहृतों को बचाने में नाकाम रहे। जापानी जांचकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय हैकिंग गिरोह के प्रमुख संदिग्ध को हिरासत में लिया था जिस पर दुनिया भर की कंपनियों पर साइबर हमले करने का आरोप है। जांच सूत्रों के अनुसार इस महीने की शुरू में संदिग्ध को जर्मनी के अधिकारियों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध 28 वर्षीय रूसी नागरिक है जो किलिन नामक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का एक प्रमुख सदस्य है। माना जाता है कि किलिन गिरोह ने कई वर्षों से रैंसमवेयर हमलों को अंजाम देकर दुनिया भर की कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रैंसमवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी कंपनी के डेटा को बिना अनुमति इनक्रिप्ट कर देता है और उस डेटा को जारी करने के लिए फिरौती मांगता है। जापान और अन्य देश इस गिरोह का मिलकर पता लगा रहे थे कि तभी अधिकारियों को सूचना मिली कि संदिग्ध जापान में है। खबर है कि मई में जापानी जांचकर्ताओं ने जापान के पश्चिमी शहर ओसाका में संदिग्ध को हिरासत में लिया था। जापान के चिप निर्माता रैपिडस का कहना है कि विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से वो 17 घरेलू और विदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है। कंपनी अगली पीढ़ी के अर्धचालकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास तेज कर रही है। इस उद्यम में तोशिबा समूह की एक कंपनी, दाई निप्पोन प्रिंटिंग और तोप्पान जैसी जापानी कंपनियां हैं तथा विदेशों से अमेरिकी और भारतीय कंपनियां हैं। रैपिडस का कहना है कि ये साझेदारी रैपिडस कोर नामक एक नए ढांचे का पहला चरण है। इस पहल के तहत चिप के डिजाइन और उत्पादन से जुड़ी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाया गया है। उन्नत चिप क्षेत्र में कामगारों की कमी के बीच ये पहल की गई है। रैपिडस कंपनी अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उत्तरी जापान के होक्काइडो में 2 नैनोमीटर की उन्नत चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना चाहती है। जापान सरकार ने लगभग 30 खरब येन यानी करीब $19 अरब की सहायता देने का वायदा किया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त में हस्ताक्षरित संयुक्त रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में सैन्य बलों की शीघ्र तैनाती के लिए आवश्यक उपाय करने का फैसला किया है। तीनों देशों ने सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक आपात बैठक की। सऊदी अरब और पड़ोसी देश यमन में सरकार विरोधी गुट हूथी के बीच जारी हमलों के बीच ये बैठक हुई है। बाद में जारी एक संयुक्त वक्तव्य में हूथी विद्रोहियों का नाम लिए बिना सऊदी अरब पर ताजा हमलों की कड़ी निंदा की गई। वक्तव्य में कहा गया कि तीनों देश त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार सामूहिक रक्षा से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन की दिशा में तत्काल कदम उठाएंगे। वक्तव्य में आगे कहा गया है कि समझौते के तहत बनी सहमति के आधार पर वे सऊदी अरब में सैन्य बल व साधन उपलब्ध कराने और उनकी त्वरित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक उनकी रिहाई की मांग में राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। पश्चिमोत्तरी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। यह क्षेत्र इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी पीटीआई का गढ़ है। इमरान खान को 2022 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और 2023 में उन्हें भ्रष्टाचार व अन्य आरोपों में जेल भेज दिया गया था। उनके समर्थकों के अनुसार ये आरोप राजनीति से प्रेरित थे। इमरान खान की तीन बहनों को पिछले महीने सार्वजनिक व्यवस्था कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारी उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। नेपाल चीन सीमा पर अगस्त में आई भीषण बाढ़ की आपदा के बाद नेपाल सरकार ने तलाश और बचाव अभियान स्थगित करने का फैसला किया है। सरकार ने सोमवार को सैन्य और पुलिस कर्मियों से जुड़े अभियानों को स्थगित करने की घोषणा की। अब केवल आवश्यक तलाश और बचाव कार्य ही किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि आपदा के 40 दिन बाद जीवित लोगों के मिलने की संभावना कम है। उन्होंने बताया कि नई जानकारी मिलने पर अभियान फिर से शुरू किए जाएंगे। 26 अगस्त को आई इस आपदा में नेपाल में 1455 लोग मारे गए और 5200 से अधिक लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों में 5 जापानी नागरिक भी हैं। चीनी मीडिया ने बताया कि चीनी क्षेत्र में 43 लोग मारे गए और 510 से अधिक लापता हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।